ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद बुहेरा अहमर के एक बरामदी मरकज पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता जुमेरात को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद बंदरगाह यांबू तक खाम तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। इस पाइपलाइन को अपना हुरमुज के मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रॉयटर्स ने मंगल के रोज जहाजरानी की सनद के जराए का हवाला देते हुए खबर दी कि सऊदी अरब ने यंबो पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी है। पड़ोसी मुल्क यमन में होसी बागी सऊदी हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने अपना कंट्रोल बुहेरा अहमर में बहरी जहाजरानी की अहम बंदरगाह आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के इलाकों तक फैला दिया है। होसियों ने बुध के रोज एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया और यंबू में तेल की एक तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों से नुकसान पहुंचाया है। नेशनल पुलिस एजेंसी के माहरीन के एक पैनल ने जापान के सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए मखसूस महारतों और दीगर अहलियतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों को शामिल करने के इम्कान पर बहस शुरू कर दी है। ये शोबा कारकुनों की शदीद किल्लत का शिकार है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कानून फिलहाल मुस्तकिल रिहाइश के हामिल गैर मुल्की रिहायशियों, जापानी शहरियों के शुरकाए हयात और दीगर कुछ अफराद को इस सनत में काम करने की इजाजत देता है। माहरीन का यह पैनल, जिसमें एक सिक्योरिटी सर्विस एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक वकील शामिल हैं, बुध के रोज टोक्यो में अपने इफ्तिताही इजलास के लिए जमा हुआ। खास तौर पर इस बात पर बहस की कि आया गैर मुल्की शहरियों को मखसूस हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम और महारत के फरोग के लिए रोजगार प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी के शोबे में काम करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। नेशनल पुलिस एजेंसी के कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो के सरबराह यामादा योशिताका ने कहा कि चूंकि सिक्योरिटी की सनत गैर मुल्की कारकुनों से पूरी तरह फायदा उठाने से कासिर है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैनल के अरकान मुख्तलिफ जावियों से ऐसे लोगों को कबूल करने पर सरगर्म बहस करें। नेशनल पुलिस एजेंसी ने इशारा किया है कि मजदूरों की किल्लत के साथ साथ सिक्योरिटी की सनत को अफरादी कुव्वत की उम्र रसीदगी का भी सामना है, जहां इसके तकरीबन निसफ कारकुनों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। पैनल इस बात पर बहस करेगा कि गैर मुल्की कारकुनों को किन सिक्योरिटी खिदमात में काम करने की इजाजत दी जाएगी और वो एक ऐसा निजाम वजह करेगा जो गैर मुल्की कारकुनों को मुतल्लिका तजर्बा और महारत हासिल करने में मदद फराहम करे। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने अपनी काबीना में रद्दोबदल करते हुए बास मरकजी वुजरा को ओहदों पर बरकरार रखा है। चीफ काबीना सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने जुमेरात की सपहर नई काबीना के ओहदेदारों का ऐलान किया। और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान और अमरीका पर मंतकी और तहमुल मिजाज रहने पर जोर देते हुए दोनों फरीकों से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: इतवार को मैं पियानो की मौसीकी सुनने के लिए गई थी।
1: हारू साहब पूछती हैं,
2: दो दश्ता का
0: प्रोग्राम कैसा था?
1: मियाँ जवाब देती है,
2: सिबारिश का तरह से
0: नहायत शानदार था।
1: हारू साहब कहती हैं,
2: सरे वायो का तदस ने,
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ।
1: मियाँ दोनों को पियानो बजाने वाले मौसीकार की अपनी खींची हुई तस्वीर दिखाते हुए कहती है,
2: शशियों तक संतरी मस्ता,
0: बहुत सी तस्वीरें खींची।
2: मी तक दसाए,
0: ये देखें।
1: ताम तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है और कहती है,
2: आ, कुरे, यू किसान।
0: अरे ये तो यू किसान।
1: हारूसान के बरकियाती सेंसर ताम की आवाज में जज्बाती कैफियत को महसूस कर लेते हैं और उनके गाल रोशन हो जाते हैं। वो कहती हैं,
2: यू किसान,
0: यू किसान।
1: तस्वीरों में नजर आने वाला यू किसान शायद वही शख्स है जिससे ताम जापान में दोबारा मिलने की ख्वाहिशमंद है।
0: जी, यू किसान वही मौसीकार है जिसने वियतनाम के एक प्राइमरी स्कूल में पियानो बजाया था। ताम भी उस स्कूल में रजाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा ले रही थी। शायद दोनों की दोबारा मुलाकात होने को है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それはよかったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, पियानो की मौसीकी सुनने के लिए गई थी।
2: पियानो नो एंसो किकी नी किमाश्ता।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए जो काम किया हो उसके मुतालिक बता सकते हैं।
0: पियानो, ये पियानो का जापानी तलफ्फुज है, और एंसो महफिल मौसीकी को कहते हैं। पियानो नो एंसो के मायने हुए पियानो बजाने की महफिल। हर्फ जार ओ बाद में आने वाले फेल का मकसद ये मफूल है। किकी नी के मायने है सुनने के लिए, और इकीमश्ता फेल इकू यानी जाना का माजी का सेगा है। आज का नुक्ता किकीनी इकीमश्ता यानी सुनने के लिए गया है। इसका इब्तदाई हिस्सा किकीनी दरअसल फेल किकू यानी सुनना से बना है। इसकी मस शक्ल किकी मस का आखिरी मस हटाने से यह हो जाएगा किकी। इसके साथ मकसद जाहिर करने वाला हर्फ जार नी लगाया गया है।
1: तो गोया किसी फेल या काम का मकसद जाहिर करने के लिए उस फेल की मस शक्ल बनाकर फिर मस के बजाय नी लगाना चाहिए।
0: जी हाँ, आज के मकालमे के कलीदी जुमले में जाने का मकसद पियानो सुनना था, इसलिए पियानो नो एंसो किकीनी को फेल जाना के माजी के सेगे इकीमश्ता के साथ जोड़ा गया।
1: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
0: अब क्या हुआ काम बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
3: क्यों दोको नी इकीमाश्ता का?
2: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकीमाश्ता।
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
3: क्यों दोको नी इकीमाश्ता का?
1: आज कहाँ गई थी?
0: क्यों के मायनी है आज, और दोको तो आपको याद ही होगा यानी कहाँ।
2: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकीमाश्ता,
1: कपड़े खरीदने के लिए हराजुकु गई थी।
0: हराजुकु टोक्यो का एक फैशनेबल खरीदारी मरकज है जहाँ जदीद फैशन के मलबूसात नौजवानों को खुसूसन मुतवज्जे करते हैं। फुकु के मायने है कपड़े या मलबूसात। काइनी दरअसल एक फेल काऊ यानी खरीदना से बना है। इसकी मस शक्ल काई मस का आखिरी हिस्सा मस हटाने से ये बना काई, और उसके साथ नी लगाने से ये काई नी बना यानी खरीदने के लिए।
1: इस जुमले में हरफे जार नी दो बार इस्तेमाल हुआ है, हराजुकु नी और फुकु ओकाई नी।
0: जी हाँ, लेकिन दोनों बार मुख्तलिफ वजूहात के तहत। हराजुकु नी में नी मकाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि फुकु ओकाई नी में नी जाने के मकसद को जाहिर करता है। नी का दोनों सूरतों में इस्तेमाल मुमकिन है, इसलिए कुछ एहतियात की जरूरत है।
1: सामईन अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: क्यों दोको नी इकीमाश्ता का? हराजुकु नी फुकु ओकाई नी इकीमाश्ता। हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकीमाश्ता।
0: अब कोई और काम बताने की मशक करते हैं जो आपने किया हो। फर्ज करें आप किसी को बताना चाहते हैं, मैं सुशी खाने के लिए गया था। सुशी का दुरुस्त तलफ्फुज यूं है,
2: सुशी, सुशी।
0: खाने की जापानी है ताबेरू, और उसकी मशक

0: शक्ल होगी ताबे मस, इसका आखिरी मस हटाने से ये बनेगा
1: थापे थापे।
0: तो समीन कोशिश करें।
2: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता, सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको हफ्ते के सात दिनों की जापानी बता रहे हैं। पीर से इतवार तक के अल्फाज सुनिए और दोहराइए।
1: पीर गेत्सुयोबी, मंगल कायोबी, बुध सुयोबी जुमेरात, मुकुयोबी जुमा, कीयोबी हफ्ता, दोयोबी इतवार, निचियोबी।
0: आज के मकालमे में मियाँ ने कहा था निचियोबी नी पियानो नो एनसो किकिनी इकिमाश्ता। यकीनन इस जुमले में मौजूद दिन आपने समझ लिया होगा।
3: जी ये इतवार है, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक। कोई काम किया गया दिन बताने के लिए उस दिन के साथ हरफे जार नी लगाया जाता है। इतवार के रोज के लिए होगा निचियोबी नी। और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। मियाँ के पहले जुमले पर खुसूसी ध्यान दें।
4: निचियोबी नी ピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これユウキさん。
5: ユウキさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब मियाँ का सफरी हिदायतनामा। आज का मौजू खमाकुरा है, जहाँ मियाँ महफिल मौसीकी में गई थी।
0: खमाकुरा टोक्यो से ट्रेन के जरिए तकरीबन एक घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक मकबूल सियाती मकाम है। पहली बार किसी जंगी सरदार की हुकूमत 800 साल से ज्यादा अरसे कबल इस जगह कायम हुई थी।
3: समुराई कहलाने वाले जंगी सरदारों की पहली हुकूमत?
0: जी हाँ, खमाकुरा में वाक़े सुरुगाओ का हाचीमांगू इबादतगाह समुराई जंगी सरदार मिनामोतो से मंसूब है। इसके अलावा यहाँ महात्मा बुद्ध का 11 मीटर बुलंद अजीम मुजस्मा भी है।
3: यानी यहाँ तारीख से मुतालिक बहुत कुछ है।
0: जी हाँ, लेकिन तारीखी मकामात के अलावा यहाँ खूबसूरत मनाजिर भी हैं। पहाड़ों पर मौसम के लिहाज से चेरी के फूलों, गुले द्रीसी और खिजा में रंग बदलते पत्तों के मनाजिर से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। मुख्तलिफ जौक के अफराद के लिए यहाँ फैशनेबल दुकानें और कैफे भी हैं।
3: शानदार, गोया यहाँ खासा तनव्वो पाया जाता है। वैसे खमाकुरा समंदर के रुख पर वाकई है ना?
0: जी हाँ, और यहाँ का साहिल सर्फिंग के शौकीन अफराद में बेहद मकबूल है। साहिल से कुछ दूर जजीरा एनोशिमा है, जहाँ के खूबसूरत मनाजिर लकड़ी के छापों से बनाई गई कदीम अंदाज की तस्वीर में भी मिलते हैं। ये तस्वीर उकियो ए कहलाती है। मकामी खूबसूरत ट्रेन एनोदिन बे सियाहों में मकबूल है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने अपने कुछ प्रमुख मंत्रियों को उनके पदों पर बरकरार रखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने बृहस्पतिवार दोपहर को नए कैबिनेट सदस्यों के बारे में बताया। ताकाइची मंत्रिमंडल के 18 सदस्यों में से किहारा सहित 8 अपने पदों पर बने रहेंगे। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी, विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो भी अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। ताकाइची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सहयोगी पार्टी के एक सदस्य को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। जापान इनोवेशन पार्टी के पूर्व महासचिव नाकात्सुका हिरोशी को नियामक सुधार व संबंधित नीतियों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान और अमेरिका से तर्कसंगत और संयमित रहने का आग्रह करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने का आह्वान किया है। बुधवार को पेइचिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बैठक में उन्होंने ये आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने चीन और ईरान के बीच संबंध विकसित करने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन ईरान के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए आपसी संवाद व सहयोग मजबूत करने को तैयार है। पश्चिम एशिया के हालातों के बारे में वांग ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि क्षेत्रीय तनाव यमन और लाल सागर तक फैले। उन्होंने संबंधित पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। इसके जवाब में अरागची ने कहा कि ईरान लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता, बल्कि अपने हितों की डटकर रक्षा करते हुए एक राजनयिक समाधान चाहता है। अरागची के अनुसार ईरान का मानना है कि अमेरिका के साथ हुआ उसका समझौता ज्ञापन अब भी वैध है और अमेरिका को उसमें की गई सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी चाहिए। ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस माह के अंत में अमेरिका में होने वाली बैठक से पहले हुई है। माना जाता है कि इस बैठक से चीन पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मूल ब्याज दर में 0.25% अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बैंक ने 3 साल से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा किया है। नीति निर्धारकों ने आधिकारिक नीतिगत ब्याज दर को 3.75 से 4% के बीच रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2023 में ये दर बढ़ाई थी। फेडरल रिजर्व ने मंगलवार से शुरू हुई अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक के समापन पर इस फैसले की घोषणा की। मतदान करने वाले सभी 12 सदस्य इसके पक्ष में थे। नीति निर्धारकों ने माना कि ईरान के हालातों के कारण तेल कीमतें बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति उच्च है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ब्याज दर बढ़ाने से मुद्रास्फीति को 2% के लक्षित स्तर तक तेजी से वापस लाने में मदद मिलेगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा, हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुद्रास्फीति हमारे लक्ष्य की ओर स्पष्ट और पर्याप्त गति से बढ़ रही है। आज FOMC ने फैसला किया कि ये मानक पूरा नहीं हुआ है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद लाल सागर स्थित एक निर्यात केंद्र पर तेल की लोडिंग रोक दी गई है। सऊदी अरब ने पिछले बृहस्पतिवार को ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस पाइपलाइन का उपयोग होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर यांबो बंदरगाह तक कच्चा तेल भेजने के लिए किया जाता था। रॉयटर्स ने मंगलवार को जहाजरानी उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब ने यांबो में तेल की लोडिंग रोक दी है। पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर रहे हैं। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। हूतियों ने बुधवार को एक वक्तव्य में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यांबू में एक तेल सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों से क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी NPA की एक विशेषज्ञ समिति ने जापान के सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए निर्दिष्ट कौशल और अन्य योग्यताओं वाले विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये क्षेत्र श्रम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा सेवा कानून के तहत स्थायी निवास दर्जे वाले विदेशी, जापानी नागरिकों के जीवन साथी और कुछ अन्य लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सुरक्षा सेवा संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और एक वकील सहित विशेषज्ञों की इस समिति ने बुधवार को टोक्यो में अपनी पहली बैठक की। विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि विदेशी नागरिकों को निर्दिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम एवं कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम के तहत सुरक्षा क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। NPA के सामुदायिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख यामादा योशी ताका ने कहा कि सुरक्षा उद्योग विदेशी श्रमिकों का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वो चाहते हैं कि समिति सदस्य विभिन्न दृष्टिकोणों से ऐसे लोगों को स्वीकार करने पर चर्चा करें। NPA के अनुसार श्रम की कमी के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र को वृद्ध कर्मियों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगभग आधे कर्मचारी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि किन सुरक्षा सेवाओं में अधिक विदेशी श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जो विदेशी श्रमिकों को संबंधित अनुभव और कौशल विकसित करने में मदद करे। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।